0: 대령이 믿는 소우디 루트 전유에 샴로 공개 나서 담시에 난 거다 거스슈
1: 미카세게 나서 해왕샤 부마 집에 지주지리 소워시 다가지 나서 해왕샤 대무역강의 여시 이내 러시아리 피게 요친유라 신배 용보 토르친유 이내 뒤 단아 요마시 리간다 초장고 좋아라 히바유자 모두 배제지오시 ये से वे थारे से नो चुदी के तोले इगां पी छेपसी गांचु दुगु छेपे बे पुगदु यु ये की मिची गांचु हा वा शा मा जोला ये जी देन बु यु जी लु दी यु ने बे जु जे जे चु जु ला मु जु तो उ जी
2: बे शे चांग जे बा शा दी ये चिन जु ना जु शी दा गा गो शी ला मा छी शी गा जे बा गा से दा चा छी जो यु दे शी ला यी दा
3: 你老早那么多啥有吗这山东看见你了吗苏拉俺就说是没被强大的经济国赛经营的马里送药这要不谢死
4: 脱了这些腿这个脱了大大的下我呀这是大根不累的哟